0: चाचू हमारी को आज्ञा ले लो।
1: तुम्हारी आज्ञा लेनी पड़ेगी।
2: हमारी
0: और का हमारी आज्ञा बिना तो यहाँ की माँ बाप ना रह सको।
1: हाँ
2: बंद तो कर दी तुमने।
1: अरे सचिव वो पे

का सते डी ई या मलवा र पिर वो रुम मा द पा गरवार वे ये ना निक कुरुगा रुम मा रिला द मा का लन उर पुक कलैवा